एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम शुभ प्रभात में म सभिका तिवारी अब 8 बजेसम्म मधुर भजनहरूका साथमा यहाँहरूसँग रहनेछु।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजन अर्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत गैस अपच ये समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिन भर को जीवन लाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेट लाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत गैस अपच र अम्ल पित्त को लागि।

शब्द तुम्हें थी, कितनी बार आई और आकर चली गई। गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, बरसात भी आई, लेकिन मानो मेरे जीवन में ये जेठ और आषाढ़ की तपती लू, ये विरह की तप्त अवस्था बनी ही रही। क्या तुम इसका निवेदन नहीं करोगे?

प्यारे तुम्हारे नहीं आने से मेरे ये जो आशाओं के दीपक जले थे ये बुझने को हो चले हैं। इसलिए प्यारे तुमसे प्रार्थना है।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. वो मेरे पीछे हाथ धो
1: पड़ा है बचा ले मुझे
0: वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है बचा ले मुझे
2: वो इतनी गाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं वो इतनी गाह क्या मिली तबीयतें मचल गईं
3: जरा वो मुस्कुरा दिए शमाए दे

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सौंठ थोड़ा तेल। अरे बोल
1: अले वाले बेटा,
2: झूम झूम कौवा की ढोलक बजाए।
3: अरे बाबा।

मोटे लाला शौकीन गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा गोल इसे लूट उसे तीन।

कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे

0: अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल। पागल सारे छुट्टे घूमे, समझदार को जेल। अरे वारे मालिक, अरे अरे, जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आंख के अंधे कमल नयन कहलाए।
1: जूते को पगड़ी, पगड़ी को जूता, चदरी को गमछा, सर को पैर बताए, आंख के अंधे कमल नयन कहलाए।
0: ऐसन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन। अरे सानी धा,
1: अरे बारे मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, सर वालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल। अरे बारे मालिक, अरे अरे घर को बाहर मार को घर, सड़क पे बिस्तर लंबी लोट लगाए, पत्थर पूजे और हमको ठुकराए, तन बिन कपड़ा कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल दिल बिन धड़कन, पहल बुढ़ापा बाद में बचपन, मागा दे सानी धापा माँ। अरे बारे मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, हम जैसों के पैर में बेड़ी लंगड़ा करे कुलेल। अरे बारे मालिक, अरे अरे पाई न कौड़ी नाम करोड़ी, लाठ की घोड़ी हर पट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, तन बिन कपड़ा धड़कन बिन दिल, पहले बुढ़ापा

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: आए प्यार के जमाने दुल्हन को मनाने
1: दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: दीवानी।
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी, मैं सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी, दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी।

0: जपदेव पतनम
1: दिल सुनता है कम
0: जपदेव पतनम
1: दिल सुनता है कम
0: जिनकी बातें है बलम
1: दिलो प्यार की कसम
0: जिनकी बातें है बलम
1: दिलो प्यार की कसम प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला फूल समझ कर झोल को उठाने वाला आज से खेल वही जो है चल जाने वाला आजा तू आजा
0: अजना अजना अजना अजना जा जा तू जा जा
1: कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना
2: आजा तू आजा
0: अजना अजना अजना अजना

0: बंबई सौ
1: दिल्ली नंबर पूरे सौ
0: सौ में लगा धागा
2: छोड़ निकल के भागा
0: चिड़िया घर में रानी बोले
1: चाय चुड़ी चाय।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One 104.8.

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडिज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना, ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना।

तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सो

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसीना सोस्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: पथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: 104.8.
1: अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: अरे कॉफी आ गई बा कामी आज।
1: चुप रहा आए।
2: भाग मत बा, झूठों के माथा मले बड़ा दिमाग।
1: भाग मत है, चुप।
0: तका लौंडा पचीसी कोयले बड़ा गावो ना।
1: आए राम जी,
0: ये राम सीता जी खाली होई।
1: आर नून रोटी कैसे जुटाई। आ करजे में उड़ जाता कमाई।
2: लोटा पाऊ जी,
1: महंगाई सौ तीन भइल बिया डाई।
2: लोटा पाऊ।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: साथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूँ।

0: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे,

0: 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन दिँदै हुनुहुन्छ हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

0: 104.8 मेगाहर्ज मा अहिले मनोरञ्जन दिदै हुनुहुन्छ हिन्दी फिल्मी गीतहरुबाट।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है।
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड क्लासिक में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जबरदस्त गाने हैं, जबरदस्त किस्से हैं। ये जो बंबई नगरिया है ना, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री दरअसल बंबई नगरिया में ही पली बड़ी है, आगे बड़ी है। तो क्या क्या दुर्घटनाएं, क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी हैं वो मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन कुछ कहना चाहते हैं डॉन पिक्चर से, इसे सुनते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि रफ़ी साहब को हम वाकई फरिश्ता सिफत इंसान कहते हैं तो क्यों कहते हैं। एक बड़ी अजीब घटना घटी थी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि उनसे बढ़कर कोई नहीं था। सुनाता हूँ कि सभी, लेकिन अभी यह बंबई नगरिया, तू देख बबुआ।

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

यानि प्यार हो गया। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, यानि प्यार हो गया।

हो सुन रहे हो लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: धीरे मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: This is Weekend Classic, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, और अभी जरा चलेंगे उस दौर में जहां पर एक बेहतरीन किस्सा हमारा इंतजार कर रहा है। रफी साहब, मोहम्मद रफी, द ग्रेट मोहम्मद रफी, उन्हें हम फरिश्ता सिफत इंसान क्यों कहते हैं पता क्या हुआ? एक बारी इन्हें बैडमिंटन खेलने का शौक था, तो ये बैडमिंटन खेलने जाते थे हर सुबह सुबह। एक मरतबा ये वापस आ रहे थे, इनके साथी भी इनके साथ थे। एक आदमी इनके जान पहचान का दूर से भागा भागा आया और कहने लगा, रफी साहब जरा कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। रफी साहब ने अपनी जेब टटोली और जितने पैसे थे निकाले और उस लड़के को दे दिए। तो रफी साहब का जो साथी था ना, जो बैडमिंटन खेल रहा था इनके साथ, उसने कहा कि कमाल करते हैं रफी साहब, पैसे गिन तो लेते हैं आप, बिना गिने दे दिया आपने, कमाल करते हैं आप। तो रफी साहब ने कहा, कमाल तो आप करते हैं मियाँ, जब ऊपर वाला मुझे बिना गिने पैसे देता है तो मैं कैसे किसी जरूरतमंद को गिन के पैसे दे सकता हूँ। जो था उस वक्त दे दिया। अब ये बात रफी साहब ही कह सकते थे कि जिसे कछु ना चाहिए वो सहान के साथ कुछ चाहिए नहीं था, बस कला से प्रेम था, काम कर रहे थे, जरूरतमंद तक चीजें पहुंचाने की कोशिश करते थे और परिवार की देख रहे, इसलिए उन्हें हम हमेशा फरिश्ता सिफत इंसान ही कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। अब जब इतनी सारी बातें गई हैं, एक गाना भी सुनते हैं ना फिल्म शागिर्द से, रफी मियां की आवाज में, बड़े मियां दीवाने, ऐसे ना बनो, सिर्फ वीकेंड क्लासिक।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर।

0: तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम
1: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे आप हमसे जुड़ते रहें।

0: लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम।
1: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहें,

0: ले आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोह

0: कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: ये तो बताओ हमको,
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: पिक्चर का नाम है दिल्ली का ठग, यह वीकेंड क्लासिक, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। और देखिए क्या हुआ, शम्मी कपूर साहब को एक बड़ा अच्छा स्कूल छोड़ना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने शरारत की थी, इसलिए क्योंकि उनके बड़े भाई राज कपूर ने कहा चल भाई स्कूल छोड़ दे। क्या हुआ था पूरा मामला सुनाता हूँ। हुआ यूं कि भाई शम्मी कपूर साहब के परिवार में सभी लोग एक्टर्स, पृथ्वीराज कपूर खुद थिएटर के जबरदस्त एक्टर, सिनेमा के तगड़े एक्टर, तो हमेशा वो क्या करते थे, अपने परिवार के बच्चों को किसी न किसी नाटक में इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब जो चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार था वो शम्मी कपूर निभा रहे थे। अब नाटक खत्म होता था रात को, देर रात को, सुबह नींद खुलती नहीं थी, आंखें सूजी सूजी रहती थी। शम्मी कपूर की टीचर ने कहा कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। अब पापा जी पृथ्वीराज कपूर के पास टाइम नहीं था, बड़े भाई राज कपूर पहुंच गए, जैसा कि अक्सर होता है। राज कपूर साहब ने कहा हाँ जी टीचर क्या हुआ, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका भाई जो है वो उसकी आंखें सूजी रहती हैं, नींद पूरी नहीं होती उसे, क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, वो नाटक करते हैं तो इस वजह से होता है। तो टीचर ने कहा इसको बोलो कि या तो नाटक अटेंड करे या फिर स्कूल अटेंड करे, ये नाटक वाटक करता है पढ़ाई क्या करेगा, नाटक अटेंड करता है। थोड़ा डांट दिया, राज कपूर साहब को गुस्सा आया कि वो स्कूल जहाँ पे हमारी रोजी रोटी की इज्जत नहीं होती वहाँ पे मेरा छोटा भाई कैसे पढ़ सकता। राज साहब ने कहा शम्मी बस्ता फाड़ लाएं, मतलब बैग उठा ले और चल, स्कूल छुड़वा दिया और दूसरे स्कूल में जाके फिर एडमिशन कराया। जिस परिवार में इतना कमिटमेंट हो उस परिवार के लोग तो सुपरस्टार बनेंगे साहब। अब शमी साहब की बात हुई है, एक गाना सुनते हैं, गाना जरा जंगली बनेगा है, अब इन्हें कोई जंगली कहे तो क्या फर्क पड़ता है।
0: चाहे कोई मुझे जंगली कहे

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: You are listening to Weekend Classic Radio Show.

मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। फिल्म का नाम खूबसूरत, जिससे आपने अभी गाना सुना, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। और एक इंसान जिसने ऐसा किया है हमेशा, वो रहे शम्मी कपूर साहब। मरहूम शम्मी कपूर की याद आ रही है, एक बेहतरीन गाना सुनाऊंगा उनकी जिंदगी से जुड़ा, लेकिन अभी एक किस्सा सुनाता हूं। उनके जीवन में अजीब अजीब चीजें हुई, प्यार हो गया इनको गीता वाली जी से, प्यार गीता वाली जी से कहें बार बार जाके मुझे शादी करनी है। वो कहते नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। एक दिन बारिश वारिश हो रही थी तो इन्होंने फिर पूछा उनसे, मुझे शादी करनी है तुमसे, तुमसे शादी करोगी क्या? तो गीता जी ने कहा करूँगी, लेकिन अभी इसी वक्त। शम्मी साहब ने कहा ठीक है, इसी वक्त चलते। इस वक्त वो पहुँचे तो सही, उस वक्त रात हो रही थी काफ़ी, मंदिर वंदिर कोई खुला हुआ नहीं था, लेकिन सुबह जब मंदिर खुला तो इन्होंने शादी की। सिंदूर भी नहीं था इनके पास, तो गीता जी ने अपनी लिपस्टिक इनको दी, इन्होंने लिपस्टिक खोली, गीता जी की मांग भरी और इस तरह से इनकी शादी हो गई। जीवन में जो कुछ करा इन्होंने जरा नियम कानून से हटके किया, और फिल्में भी वैसी करी। जानवर तो जंगली, जंगली का जिक्र आया तो जरा अय्या करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू कर लेते हैं और फिर कुछ बेहतरीन किस्से सुनते हैं। राइट नाउ रफी साहब की आवाज में ये गाना।

राम लखन से, माय नेम इज लखन, सुनाई दिया। आई एम क्वाइट श्योर आप भी थोड़ा सा मतलब तुम क्या आपने भी लगा लिए होंगे, गाना ही ऐसा है यार, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं इस वक्त आप। लेकिन अभी जरा चलते हैं उस जमाने में जहां पर एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे सामने आता है। हुआ यूं कि किशोर कुमार ने नखरे दिखाए, पंचमदा फंस गए, उन्हें बचाने के लिए महमूद साहब को कूदना पड़ा। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, हुआ यूं कि बड़ा अच्छा गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आशा भोसले जी वहां पहुंच गई थी रिकॉर्डिंग के लिए, पर किशोरदा नदारद उनको लोग फोन कर रहे हैं, उस जमाने में मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, तो घर पे फोन कर रहे हैं, स्टूडियो में फोन कर रहे हैं, पता चल रहा जी अभी आ रहे हैं, अब आएंगे। इतने में लोगों ने कहा कि यार महमूद तू क्यों इंतजार कर रहा है किशोर कुमार का, ये गाना तो वैसे भी कॉमेडी गाना है, कॉमिक गाना है ये गाना, तो तू ही गा लेना। कहते मैं गा लूं? कहते हाँ गा ले। बस जी उन्होंने गा दिया वो गाना, वाकई वो गाना हिट हो गया। महमूद साहब की बेसुरी आवाज़ में भी वो गाना बड़ा सुर में सुनाई देता है, क्योंकि उसमें जो अंदाज है, बयां है, वो बड़ा

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

आपके गुरुदेव। बलि बोले बोलते क्यों नहीं गुरुजी? गुरुजी बोले दिख नहीं रहा, अखंड जाप चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, बीच में कैसे बोलेंगे। बलि की और श्रद्धा हो गई और चरणों में गिर के बोले आपके श्री मुखारविंद के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मैं आपको दूं और वो आपके काम ना आवे तो क्या फायदा है, इसलिए मैं चाहता हूं अपने श्री मुख से आप एक बार बोलो क्या सेवा करूं।

बटोर यथा अरहत संप्रयच्छ। क्या सेवा करूं आपकी? आपको 2-4 हजार गऊ दान में दे दूं, सोने का महल बना के दान में दे दूं? सुनिए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दें? पता नहीं क्यों आपके स्वरूप के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, मन के सब कुछ दे दूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आप बोलो ना अपने छोटे से मुख से। कन्हैया ने देखा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, सो माला पूरी कर ली। आप बली हैं जी? आपने पहचाना, अच्छा पहचाना, मेरे को बली बोलते जी। राजन, आपके पूर्वजों की स्मृति मुझे है और मैं उनका कहां तक ज्ञान कराऊं तुम्हें? उनका यश त्रिलोकी में फैला हुआ है। आपके पिताजी दानी, आपके बाबा दानी, आपके पर बाबा दानी। आप भी कोई दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महात्यागी हूं, एक पैसा भी कभी दान में लेता ही नहीं मैं तो। और क्यों लेना जी, धूप लगती है तो छाता है, बैठने के लिए आसन है, जलपान करने के लिए कमंडल माता जी ने दे दिया एक मैया ने, माला भी दे दी एक माता श्री ने, भिक्षा का पात्र भी है, जनेऊ पास में है, गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भैया, कामनाओं के स्टंप लगा दिया हमने तो, एक पैसा कभी किसी से लेते ही नहीं, हमारा तो नियम है पक्का। हाँ, महात्यागी है। किसी ने पूछा ये बंगला कौन का है? बोले त्यागी जी का। ये जोर जोर से आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी जी के यहां से। ये बाल गोपाल कौन के डोल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। माया से बन के आ गए, माया माणवकम हरिम, माणवक बन के आए हैं और बलि की महत्ता को प्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं कि कितना महान पुरुष है। बलि बोले, देखिए आप बोलते हैं अकेला हूं इसलिए नहीं लेता, तो विवाह कर ले किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से, अपन तो विवाह भी करा देंगे। भगवान बोले, आप तो बहुत अच्छे हैं राजन, सारी व्यवस्था हमारी कर ही देंगे आप, आपकी बातों से ही ज्ञात होता है, लेकिन विवाह के बाद में तो बहुत मुश्किलें हैं, इसलिए मैं तो अकेला ही ठीक हूं। अब बाल गोपाल हुए तो पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था। बलि बोले, हम सब करेंगे। शिक्षा के लिए भी हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय है, आपके भोजन की आवास की कोई अव्यवस्था न होगी, आप हां करो। भगवान बोले, नहीं, एक व्यवस्था आप न कर पाएंगे। मान लो विवाह हुआ, 2-4 बाल गोपाल हुए, उनमें कभी कभार एकांत कोई मर भी जाए तो मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करेंगे? बलि बोले, रोना तो था नहीं पड़सी महाराज, अब बेटा आपका जाएगा तो मैं किराए पर रोने वाले तो नहीं बुला सकता। प्रभु ने कहा, प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, शास्त्र कहते हैं जिसको तुम प्रेम करते हो ना वो एक दिन तो तुमको रुलाता ही है। ऐसा काम अपने करे ही क्यों जिससे रोना पड़े? छाता में ठीक है हम, हाँ, और कमंडल जो, यही हमारे लिए बहुत कुछ है, अपन को नहीं चाहिए। चरणों में गिर के बोले, कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप कुछ लिए चले गए तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मचारी विप्र आया और तुमने कुछ भी नहीं दिया। भगवान बोले, देखो आज 5 गांव दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, 500 की इच्छा होगी, 1000 की इच्छा होगी, ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा तेषूप जायते, ये बढ़ती चली जाती है। इसलिए मैंने तो अपनी कामनाओं को विराम दे दिया, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अब मैं आपकी तरफ जब बार बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना लूं तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। बलि बोला, बहुत कष्ट होगा मुझे,
बिना कुछ लिए चले गए तो इतना कष्ट को मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान बोले मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है और नहीं लेता हूं तो आपको कष्ट होता है। मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करूं कि आपका आपको कष्ट भी ना हो और कदाचित मेरा नियम भी ना बिगड़े। क्या करें,

तुम केवल तीन पैर पृथ्वी हमें दान में दे दो, बस लाभ हो गया ना। तीन पैर पृथ्वी ले रहे हैं इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए अपना नियम भी नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों ही बात होगी। तीन पैर धरती, हां बलि बहुत हंसे। ब्रह्मचारी जी माफ करना, तुम रहे बामन के बामन। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते बद्ध सम्मता, तुम बालो बालिश मति। आप बच्चे हो ना अभी, इसलिए आपकी मति भी बच्चों जैसी है। आपको जरा भी ध्यान नहीं है। त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के तीन पैर धरती मांगते हैं आप हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं, अगम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुणा बामन चौपट पाट। मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर तीन पैर धरती, प्रभु ने मुस्कुराकर इशारे से देखा और मानो वो ये कहना चाहते हो, बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है, तुम तीन पैर ही पूरे कर देना, अभी पता चलती है। भगवान का देखो, हमने तो जो बोलना था सो बोल दिया, आपकी श्रद्धा को देख के बोला हमने। हाँ पौने तीन भी नहीं लेंगे, सवा तीन भी नहीं लेंगे। और एक बात तो मैं कहना भूल गया, वो तीन पैर धरती जो मैं नापूंगा वो अपने पैरों से नापनी है, आपके पैर से नहीं। बलि बोले कर लो बात, 3.5 बिलियन के टोटल हैं आप। अरे आपके तीन पैर में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है। भगवान बोले जो बोलना था सो बोल दिया। अब जल्दी कमंडल में जल लेकर के आओ और आकर के संकल्प कर दो महाराज। तीन पैर धरती का क्या संकल्प करूं, बहुत शर्म आती है। भगवान का बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं है। संकल्प का मतलब तो पूरा रजिस्ट्रेशन ही होता है ना जी, संकल्प के बाद मना नहीं कर सकते। हाँ गुरुजी दोनों की वार्ताएं सुन रहे हैं बहुत देर से शुक्राचार्य। आधा सेकंड को बाबा ने आंख बंद करी, बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। आंख बंद करी तो बामन में नारायण का रूप दिखाई दे गया। शुक्राचार्य तुरंत बलि का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए, बोले राजन ये न बामन है न त्रिपन है, इनके चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो कौन है,

देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए परात्पर नारायण विष्णु ही तुम्हारे घर बामन बनकर के आए हैं, और मुझे बिल्कुल दर्पण में दिखाई दे रहा है। तुमने तीन पैर धरती देने का संकल्प इनको कर दिया राजन, तो ये दो पैरों में त्रिलोकी को नाप लेंगे और तीसरा पैर देने को तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ संकल्प नहीं हुआ, मना कर दो, बिल्कुल दो टूक मना। बोले मैंने देने लेने की कोई बात नहीं करी, पधारो फिर कभी आना। बड़ी बोले झूठ बोल जाऊं मैं, आप मेरे कुलगुरु हैं, आप मेरे कुल के आचार्य हैं, और आप कहते हैं कि मैं इनसे राम राम असत्य बोल जाऊं कि मैंने कोई बात देने लेने की नहीं करी, ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? असत्य यानी कि झूठ? नहीं नहीं, शुक्राचार्य बोले यही तो तुम समझते नहीं हो राजन, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बोले आठ जगह ऐसी होती हैं राजन, जरूरत पड़ने पर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार यदि इन आठ जगहों में झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं होता, पर यह छूट एक बार की है। कौन कौन सी जगह है?

0: जगोपसितम, बड़ी सुंदर बात कही। बोले माताओं से किसी बात को छुपाना पड़ जाए तो पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक बार असत्य बोलकर भी उनसे बात छुपानी पड़े तो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा मातृ हृदय अति कोमल होता है, इनके हृदय में बहुत कोमलता होती है।
1: हाँ,
0: आपने कोई गंभीर बात अपनी धर्म पत्नी को बताई, आपने बिल्कुल गलती नहीं की। वो घर की मालकिन है, घर की स्वामिनी है, उनको तो बताना ही चाहिए। आपने धर्म पत्नी को कोई गंभीर बात बता दी तो आपने गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद आपने ये निर्देश यदि दे दिया कि बड़ी गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं देवी, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। अब वो 24 घंटे ये सोचेंगी पति ने मना किया, बात किसी को कहना नहीं है, हे भगवान ये बिल्कुल किसी से कहना नहीं है, हे भगवान मेरे मुंह से कहीं निकल नहीं जाए, हे भगवान ये तो किसी को बतानी ही नहीं है, और वो बात जरूर बता देंगे। बस मंदिर गई, उदास हैं, इनकी कोई मित्र मिली सहेली, क्या बात है उदास लगती हो, नहीं कोई बात नहीं, हमसे छुपा रही हो, नहीं कोई बात नहीं, देखो अब बताने से आधी बात का वजन कम हो जाता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अब देख लो तुम हमसे ही छुपा, देखो ऐसी ऐसी बात है मेरे घर में, ऐसा हो गया, हे भगवान मैंने तुमसे कह दिया, तुम किसी से मत कह, ना मेरी तो ये आदत ही नहीं है, और ये तुम सत्य समझ लो कि मेरे मुंह से बात कभी जीवन में निकलेगी नहीं, ये स्वभाव ही नहीं मेरा तो। हाँ फिर उनको तीसरी मिल गई बातों ही बातों में ऐसा, हाँ ये तो उनके घर भी ऐसा हुआ था, हे भगवान मैंने तुमसे कह दिया, देखो तुम किसी से मत कहना, उनकी पत्नी ने मुझे बड़े विश्वास में लेके कहा था, ना मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है। तो अति कोमलता, इसमें निंदा नहीं है, ध्यान रखना, ये मातृ हृदय की कोमलता, प्रभु ने उनको कोमल ज्यादा बना दिया। अब आपने कोई बात बता दी, पीछे से आपका कोई शत्रु आया और झूठे के आंसू बहा करके आपकी पत्नी के सामने बैठकर रोने लगा, ये रोना तो किसी का देख ही नहीं सकते। अब आपका शत्रु रोते रोते आपकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी इनसे पूछेगा सब बता देंगी, और वो तो जरूर बता देंगी जिसके लिए मना किया था। अगला आदमी रो रहा है, इसलिए विशेष परिस्थिति यदि ऐसी लग रही हो कि यह बात बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए तो पत्नी से भी छुपाना पड़े और उसके लिए कदाचित एक बार असत्य बोलना पड़े तो एक बार की यह बिल्कुल छूट है, जो परिस्थिति उससे ज्यादा बड़ी है। तीसरी बात, युधिष्ठिर जी का साप भी है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। महाराज कर्ण जो थे माता कुंती के पुत्र थे, सबको मालूम है। महाभारत के तीन जो विशिष्ट वीर हैं, योगेश्वर कृष्ण, भीष्म पितामह और श्रीमान कर्ण, ये सर्वश्रेष्ठ तीन वीर हैं महाभारत के। कर्ण के बारे में तो क्या बताएं, हिंदी में एक पुस्तिका पढ़ता था मैं बचपन में, नाम था रश्मि रथी, क्या गजब का चित्रण है कर्ण के चरित्र का। पर कर्ण ने दुर्योधन से मैत्री की और युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए, सब लोग जानते हैं। अब क्योंकि मारे गए जितने कौरव हैं वो युधिष्ठिर जी के ताऊ के बेटा हैं, भाई हैं, सगोत्री हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज सबको पिंडदान कर रहे हैं, सबको पिंडदान दे रहे थे। माता कुंती ने आके कहा एक कर्ण के नाम से भी दे दो बेटा। बोले क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं माता, फिर कर्ण का पिंडदान मैं कैसे करता हूं, उसको श्राद्ध मैं कैसे कर सकता हूं। माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए, तू कैसी बात कर रहा है बेटा, अरे कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था। युधिष्ठिर बोले क्या कहती है आप माता? बोले कुंती भोज राजा जिन्होंने मुझे पाला दत्तक पुत्री के रूप में, जब मैं वहां पर थी बचपन में तो संत दुर्वासा आए थे बेटा, मैंने बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा की, समय पर जल देना, फूल पहुंचाना, माला पहुंचानी। जाते समय दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए मुझसे, बोले बेटी तूने बहुत सेवा की है, मांग क्या चाहिए। मैंने कहा बाबा कुछ भी नहीं चाहिए। जाते जाते वो मुझे मंत्र देकर चले गए, बेटी इस मंत्र से जिस किसी देवता का तू आमंत्रण करेगी वो देवता तुरंत तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। और वो चले गए। अब मैंने एक दिन ऐसे ही कुतूहल बस मंत्र पढ़ा, सूरज को देखा, सूरज आ गए। सूरज नारायण ने बोले क्या चाहिए बोलो। मैंने कहा नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैंने तो वो मंत्र की परीक्षा के लिए आपको ऐसे ही बुला लिया, क्षमा करें। सूरज ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग देव हैं, आते हैं तो कुछ देते हैं। अब देवी आपके यहां मेरे जैसा सुंदर पुत्र प्रकट होगा। कुंती बोली क्या कह रहे हैं आप, मैं तो कुमारी हूं महाराज। नहीं नहीं मुझे ये, आप जाइए और ये वरदान मेरे को नहीं चाहिए। सूरज बोले आप कन्या ही रहेंगी, ये तो मंत्र शक्ति से होगा, लेकिन मैं समाज को क्या बताती युधिष्ठिर, मैंने डर की वजह से लोक लाज की वजह से उस बच्चे को लता पत्रों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, और बालक गंगा में बहता जा रहा है तो अधीरथ नाम के सूत जिनकी पत्नी का नाम है राधा, तो अधीरथ नाम के सूत की पत्नी राधा ने मेरे बच्चे को नदी से लेकर गोदी में उसको आश्रय दिया, और कुंती का पुत्र जो कौंतेय कर्ण है वो राधा का पुत्र राधेय हो गया। तेरा खास बड़ा भाई था। महात्मा युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू चल चला गए, माता ये तुमने क्या किया, इतने बड़े अतिरथी वीर को तुमने कितनी सहजता से मरने दिया, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं जब कभी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से मेल क्यों खाते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कर्ण हमारा भाई हो सकता है। और ये गंभीर बात तुमने हमसे छुपाई माता, मैं शाप देता हूं कि आज के बाद कोई वंदनीय माता भी अपने हृदय में किसी बात को बहुत काल तक छुपाकर नहीं रख सकेगी। तो शायद युधिष्ठिरी जी का शाप भी इनके हृदय की कोमलता में एक कारण बन गया हो। इसलिए अति गंभीर विषय पर ज्यादा आवश्यकता दिखाई देती हो, एक बार यानी कि सिर्फ एक बार माताओं से भी किसी बात को छुपाने में हमें आसक्ति का आश्रय लेना पड़े, एक बार की छूट है। स्त्री सो और नर्म हंसी मजाक में हमारे मुख से झूठ निकल जाए, देखो वो सत्य तो नहीं है लेकिन उस असत्य का दोष नहीं होता। विवाहेच, अब शादी विवाह में किसी कन्या की हमें थोड़ी ज्यादा ही प्रशंसा करनी पड़े। अब कई बार ऐसा हो जाता है, महाराज आप उस परिवार में कथा के लिए पधारे थे, उसी परिवार की बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है, आपने देखा होगा कैसी है कन्या। अब भले ही मैंने उसको देखा नहीं है तो अभी एक बार तो मुझे जरूर कहना चाहिए, बहुत सुशीला है, बहुत अच्छी है, बहुत शिक्षित है। आप लोग अपनी मर्यादा और हिसाब से देख लीजिए, लेकिन बेटी अच्छी है तो उसमें दोष नहीं लगता। और वृत्तर थे, अपना संपूर्ण धन यदि नष्ट होने का अवसर उपस्थित हो गया और मैं जानता हूं कि आज मैं केवल सत्य पर ही टिका रहा तो यह धन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, तो एक बार परिवार को ध्यान में रखना, सत्य बोलकर वो धन बचाना।

अपना संपूर्ण धन यदि नष्ट होने का अवसर उपस्थित हो गया और मैं जानता हूं कि आज मैं केवल सत्य पर ही टिका रहा तो यह धन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो एक बार परिवार को ध्यान में रखना, सत्य बोलकर वो धन बचाना, ब्राह्मण की वृत्ति की रक्षा के लिए या किसी भी प्राणी की हिंसा को रोकने के लिए एक बार ऐसा करना पड़े तो उसमें दोष नहीं होता। आपके पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया और वैसे भी प्रजा की संपत्ति के 15% से ज्यादा दान करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए महाराजा मना कर दीजिए, मैंने देने की कोई बात नहीं की, पधारी है जाइए। राजा बलि ने बहुत सुंदर बात की, कहे महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये साक्षात भगवान हैं तो सब कुछ लूट करके ले जाएं, परवाह नहीं है। लोग ये तो कहेंगे बलि क्या भगवान भी मांगने को आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो। और यदि ये भगवान नहीं है कोई ब्रह्मर्षि है तो मेरे भारत का ऋषि जितना बोलता है उतना ही लेगा, उससे एक इंची भी ज्यादा नहीं ले सकता। भारत के ऋषि तो वचन के ही धनी होते हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले सुनिए, आप गुरु और शिष्य दोनों की कोई गोपनीय मंत्रणा चल रही है क्या? तो फिर मैं जाता हूं, अभी इच्छा नहीं है तो रहने दो, फिर कम ही आ जाएंगे। बलिन का महाराज 2 मिनट बाद किसने देखा, गुरु जी आप रुकिए, विष्णु पुराण में तो आता है कमल को कमंडल की नली में भी बैठ गए थे शुक्राचार्य आचार्य जी, भगवान ने कुशा के आसन से उसमें ऐसे करके कहते हैं उनकी एक पधरा दी, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मनीषियों का मंतव्य है कि भगवान ने ऐसा करके शुक्राचार्य जी को कदाचित ये बताया होगा कि आप आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, और कुल गुरु वही श्रेष्ठ होता है गुरु जो सबको एक नजर से देखे, दो नजर से नहीं। भेद दृष्टि दो दृष्टि, अभेद दृष्टि ही एक दृष्टि है। हाँ, शुक्राचार्य तो शाप देख के चले गए। हाँ, बलि ने कहा ठीक है महाराज जी, अब लीजिए संकल्प। भगवान बोले तो फिर जल्दी बोलो, वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम त्रीणी पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। और संकल्प जब हो गया, अब प्रणाम करो। बलि ने साष्टांग दंडवत करी और उठकर के देखा तो जहां भगवान का मुखारविंद था वहां तो चरण ही है। बलि ने ऐसे करके देखा तो मुंह तो दिखता ही नहीं, कहां चले गया, विराट बन गए मेरे गोविंद। बोले विराट भगवान की, अब भूख विराट का रूप धारण कर लिया, एक चरण को नीचे स्थापित किया, दूसरा चरण इतना लंबा कि त्रिलोकी तो बीच में ही आ गई। और भगवान का द्वितीय चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोकर जल कमंडल में रख लिया, वही तो गंगा माता है। महाराज पूरा ब्रह्मांड प्रभु के शरीर में आ गया। दैत्यलोक तो मारने दौड़े, बड़ा धोखा किया है ये विष्णु ने आकर के, लेकिन बलि ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं और मैंने संकल्प दिया है, जैसा इनको रुचिकर लगे करने दो। त्रिलोकी को नापने के बाद में भगवान बलि के सामने खड़े हो गए, बोले आपने 3 पैर धरती देने का वाकादा संकल्प किया था, और जो संकल्प करके पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी हो सकता है। गरुड़ जी ने आकर के पास में बांध करके डाल दिया, पड़े रहो, बताओ तीसरा चरण कहां रखें। आजकल का भक्त होता तो सीधा ही बोल देता, महाराज संकल्प लेते समय तो आप 3 बिलांद के थे, नापने के लिए लंबे हो गए तो मैंने ठेका ले रखा सब बात का, छोटे होके नाप लो मैं मना कब करता जी। पर ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, कम से कम भगवान के सामने। राजा बलि के मन में जरा भी क्षोभ नहीं है, चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है, जरा भी चिंता का भाव नहीं है, हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान ने कहा बताओ तीसरा कहां रखें। बलि ने कितना सुंदर जवाब दिया, आपने कहा तो प्रभु नरक वर्क में जाने का तो मुझे डर नहीं लगता है, मैं तो डरता हूं तो सिर्फ एक बात से कि किसी ब्रह्मर्षि को दिया गया मेरा वचन झूठा ना हो जाए। यद्यु

பதம் திருத்தீயம் குரு சீஷ்ணிமேனியம். आप तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले मालिक तो धन से सौगुना बड़ा होता है। तो अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है केशव, मालिक तो बाकी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। बलि का इतना कहना था, मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। अरे बलि, आया था तुमको छलने के लिए, पर तेरी श्रद्धा ने तो मुझको छल लिया। आया था तुम्हें लूटने के लिए, पर तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। तीसरा चरण प्रभु ने बलि के सिर पर रखा, लेकिन बलि की पत्नी तो बलि से भी चार हाथ आगे भगवान से मुस्कुरा के बोली,

ये पूरा विश्व प्रपंच आपकी क्रीड़ा है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कि अपने आप को इसका मालिक बोलता है। साम्यम तो तत्र कुधियो परईस कुर्यु, मेरे पति को आपने त्रिलोकी का राज्य दिया, ये बड़ी कृपा थी, और आज लूट लिया, ये तो डबल कृपा है। आपकी संपत्ति आपके पास, इसमें किसी का क्या। कहते हैं आकाश से प्रहलाद जी उतर के आए। प्रहलाद बलि के खास बाबा है। दादाजी को देखा तो बलि तो प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्यों बना पड़ा बेचारा। नहीं, प्रहलाद जी को दंडवत करते कितने दिन बाद आज आए हैं बाबा ऊपर से। भगवान के चरणों में प्रहलाद ने प्रणाम किया और एक और सुंदर बात कह दी।

त्रिलोकी का साम्राज्य मेरे पौत्र को आपने प्रदान किया, ये कृपा है। और हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आज आपने वो सब ले लिया, ये तो और ज्यादा आनंद की बात है, और सुंदर बात है। आप दें वो कृपा, लें वो डबल कृपा। ब्रह्मा जी के सामने प्रभु ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारा पौत्र तो तुमसे भी आगे निकला। ब्रह्मा बोले, बंधा पड़ा है बेचारा, इसको खोल तो दीजिए प्रभु। प्रभु ने अपनी महिमा बताई, अपने स्वभाव को बताया और प्रहलाद से बोले, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाही सुतलालयम। प्रहलाद, आज से मैंने सुतल लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र बलि को दिया, तुम वहां जाओ। कैसा है सुतल? बोले, सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, स्वर्गवासियों के लिए भी वंदनीय जो सुतल लोक है उसका राज्य मैंने बलि को दिया। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। त्रिलोकी भगवान ने स्वर्ग में देवताओं को दे दी। फिर बोले, बलि की जो इच्छा हो सो बलि महाराज मांग सकते हैं। बलि बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम मांग लो, कहोगे मुझे त्रिलोकी चाहिए तो चाहे हमें इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, मैं त्रिलोकी तुम्हें दिला सकता हूं।